0: उनों के ऊपर दिल का प्यार अवश्य होता है, जो उनों को भी महसूस होता है बाबा का प्यार मेरे से। ऐसे दिल खुश बच्चे बहुत है और सदा ही खुश रहेंगे, जो नहीं भी है तो भी सदा खुश रहेंगे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Peace.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी भी सच्चे दिल के सने में
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कई बच्चे कहते हैं हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति इतनी नहीं होती है। उसका कारण वरदान सबको एक है कि दूसरा दूसरा एक ही है ना। 60 साल वालों को भी एक, तो एक मास वाले को भी एक। खजाने सभी को एक जैसे, पालना सबको एक जैसे, दिनचर्या मर्यादाएं सबको एक जैसी। दूसरी दूसरी तो नहीं है ना, ऐसे तो नहीं कि विदेश की मर्यादाएं और है इंडिया की और है, ऐसे तो नहीं है। उसको कर सब दिमाग से करते हैं ना, थोड़ा टाइम दिमाग में याद रहेगा। हाँ पापा ही कराने वाले हैं, हाँ पापा ही कराने वाले हैं, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वही मैं बना, इसलिए दिमाग और दिल दोनों का बैलेंस रखो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Emerge.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पाप की दृष्टि व वृत्ति में हर बच्चे के लिए स्वमान जो मन में आता है ना कि ये बदल जाए, ये नहीं करे, ये ऐसा हो, वो शिक्षा से नहीं होगा, लेकिन सम्मान दो तो जो मन में संकल्प रहता है ये हो,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अमृत वेले से लेके जब उठते हो तो परमात्म प्यार में लवलीन होके उठते हो। परमात्म प्यार उठाता है दिनचर्या की आद। परमात्म प्यार होता है, प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आप

sale del mel. Per me tamsat. Har kariye karadı. Para negeliyat.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सब वाह वाह हो ना,

πατέρα, από το Ιάτχαρτ.

इसमें अटेंशन देना है, इसके हाथ उठाओ। सुबह को उठते ही ये बाबा शब्द याद कर, पाप देखे

हुआ शब्द बोलना नहीं, ये सभा में हाथ उठाया ये बोलना नहीं।

以前啊，许爸爸都叫我个故事，故事比爸多些。哎呀，我该阿不叫我说个爸个来的，故事爸这。Awesome.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सेवा में आजकल

0: उसका कोर्स कराना, शक्ति बढ़ने का कोर्स, वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं, वाणी के साथ साथ शक्ति बढ़ने का कोर्स भी हो, जिससे अच्छा अच्छा कहीं नहीं लेकिन अच्छा बन जाए, ये वर्णन करे कि आज मुझे
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। कोई पद दुआ देवे
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बन सकते

Sim.

seul. Sădai. Cartegelul.

神杀的。都是那个鬼。一岁一个个。Smith

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा सदा कहते हैं, अगर किसी भी रूप में एक बाप का संबंध भी याद है, बाबा दिल से निकले बाबा, मंत्र माफक नहीं बाबा, बाबा वो राम राम कहते हैं आप, बाबा बाबा कहते, लेकिन दिल से निकले बाबा।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जय ब्राह्मण परिवार में आपका नाम नामिक रामी नहीं सेवा दरी हो अच्छी, लेकिन नाम नहीं है आपका। लेकिन बाप के पास तो नाम है ना, जब बाप के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए। और सिर्फ बाप के दिल पर नहीं, बाप दादा ये नहीं देखता, हिसाब रखते हैं, चांस नहीं मिला आप राइट हो, लेकिन आपको चांस नहीं मिला तो वो भी नोटिस है, और मांग के चांस लिया वो किया तो सही, लेकिन वो भी मार्स कट होते। ये धर्म राज का खाता कोई कम नहीं, बहुत सूखम हिसाब किताब। इसीलिए नेर स्वार्थ सेवादारी, अपना स्वार्थ नहीं, कल्याण का स्वार्थ, अगर मानो आपको चांस है दूसरा समझते हैं कि हमको भी मिले तो बहुत अच्छा, और योग्य भी है, अगर मानो आप अपना चांस उसको देते हो तो भी आपका शेयर उसमें जमा है, चाहे आपने नहीं किया, लेकिन दिया किसको चांस तो उसमें भी आपका शेयर जमा हुआ, क्योंकि सच्चा डायमंड बनाना है ना, तो हिसाब किताब भी समझ लो, ऐसे लंबे ले नहीं चलो, ठीक है हो गया दिन पूरा, बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब कचोबरा, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है ऑटोमेटिक।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Jeez.

0: जिस सने की शक्ति से वो स्वयं परिवर्तित हो जाए, ऐसे बड़ी दिल वाले हो कि छोटी दिल समाने की शक्ति है समानो। साखर में कितना कचरा डालते हैं, डालने वाले को वो कचरे के बदले कचरा नहीं देता। आप तो ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर के बच्चे हो, मास्टर।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: एक्सीडेंट

Gang.

0: इस बात पर अटेंशन दिला रही है, किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या स्वभाव के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो, बनना ही पड़ेगा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: दिल में चट्टा तो लहरा लिया।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: इन्होंने 5 दिन फुल स्टॉप लगाने की पट्टी की और पांच ही दिन लगातार कोई भी मिस नहीं हुआ। आत शुरू भी की और अंत तक आपके सामने, तो ये पुरुषार्थ अच्छा किया। ऐसे आप लोग भी ग्रुप ग्रुप बना के अंदर ही अंदर पुरुषार्थ, चलो दो जने हो सेंटर पर, कोई एक सखी को साथ बना दो और अपने बड़ी को सुना दो। तो क्या है, पट्टी करेंगे ना, विशेष नियम बनाएंगे तो उसका मदद मिलेगी। तो बाप दादा को अच्छा लगा, अभी सहज पुरुषार्थ हो गया ना, अभी वहां जाके भूल नहीं जाना, बातों में नहीं आ जाना, फुल स्टॉप में नंबर 1 लेना।
2: दूसरों को कराएंगे
1: भी और अपना अनुभव सुने।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: मुश्किल लिखा जाता है।

0: Sonika, Fleck, Janda, Leravi, or Tel or Kit Kai, Tel Mekit Kai, Hamara Baba, Akaya, Mita Baba. चाहते हो ना कि जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता का झंडा सबके दिल में ले रहे, तो इसका कारण क्यों, क्या, कैसे हो?
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप तो विश्व के परिवर्तक हो, विश्व कल्याणकारी हो, इसलिए बाप यही चाहते कि चलते फिरते राजा पर नहीं भूलो, सीट को नहीं छोड़ो, बिना सीट के कोई ऑर्डर नहीं मानता। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कितना कुछ करते अपना हक लेने के लिए, कितना प्रयत्न करते अपना हक कोई छोड़े नहीं चाहता। आप अपना बर्बादम हक मैं कौन हर समय जो काम करते हो अपने मन का टाइम टेबल बना के रखो। ये काम करते हुए मन का स्वमान क्या रहेगा? आज के दिन कौन सा लक्ष्य रखो? हर काम के टाइम जो भी अपने स्वमान की लिस्ट है, भले बिना बिना टाइम टेबल बनाओ, जैसे स्थूल कर्म का टाइम टेबल फिक्स करते हो, वैसे मन का टाइम टेबल फिक्स करो। मालूम तो है इस समय ये काम करना है, उसके साथ स्वमान कौन सा रखना है, मालिकपन का अधिकार किस स्वमान के रूप में रखना है। ये मन का टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाने आते हैं ना, आते हैं, माताओं को आते हैं, माताएं अपना आप भी प्रोग्राम बनाओ। अच्छा खाना बनाना है, उस समय कौन सा स्वमान अपने बुद्धि में इमर्ज रखना है। बहुत माला है स्वमान की, इतनी बड़ी माला है जो स्वमान गिनती करते जाओ और माला में समा जाओ।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ब्रह्म जीवन की मोट सदा केयरफुल और केयरफुल मोट बदलना नहीं चाहिए। रूप में कहते हैं आज मुझे बड़ी एकांत चाहिए। क्यों चाहिए? करना सेवा या परिवार से किनारा है। और कहते हैं शांति चाहिए, एकांत चाहिए। आज मूड मेरा ऐसा है, मूड नहीं बदले करो, कारण कुछ भी हो, लेकिन आप कारण को निवारण करने वाले के कारण में आने वाले निवारण करने वाले ठीक कर क्या लिया है? कंट्रेस्टर होना तो क्या कंट्रस्ट लिया है कि प्रकृति के मोड भी चेंज करे? प्रकृति को भी चेंज करता है ना, तो प्रकृति परिवर्तन करने वाले अपने मोड को नहीं परिवर्तन कर सकते। चेंज होती है कि नहीं? हाँ, होती है, कभी कभी होती है। फिर कहेंगे सागर के किनारे पर जाके बैठते, ज्ञान सागर नहीं स्थूल सागर। फॉरेनर्स ऐसे करते हैं ना, करते हैं। या कहेंगे आज पता नहीं अकेला अकेला लगता है, तो पाप कहा कंबाइंड रूम कहा गया, अलग कर दिया कंबाइंड से अकेले हो गए। ये प्यार, ये इसको प्यार कहा जाता है। तो किसी भी प्रकार का मूड, एक होता है मूड ऑफ, वो बड़ी बात, लेकिन मूड परिवर्तन होना ये भी ठीक। मोटा वाले तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के खेल दिखाते हैं। बाप दादा दिखता है, बड़ों को बहुत खेल दिखाते हैं, या अपने साथियों को बहुत खेल दिखाते।

0: वो पाप समान बन जाए और बाकी बने या नहीं बने, नहीं, सबको समान बनाता ही है, यही बाप दादा का प्यार।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Sede Consipat Hemavir Lekin Jesse Shastrome Sorry.

Merci follement.

0: ਕਿਉਂ ਪਰ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੁਕਤੀ ਧਾਮ ਮੇ ਤੋ ਭੇਜੋ।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज के दिन सभी के दिल में छोड़ना है और क्या बनना है।

Rica.

बच्चे के लिए क्या चाहता है।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुन रहे हैं यह है खुशी का संगम।
1: ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं है। ये नहीं सोचना, विनाश होना है अचानक, पूछ के नहीं आएगा कहाँ तैयार हो। सब अचानक होना है। आप लोग भी ब्रह्मा कैसे बने? अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, समन संपर्क हुआ, बदल गए। अचानक ही हुए ना, सोचा था कि इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे, सोचा था। अचानक हो गया ना तो परिवर्तन भी अचानक होना। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी, सोचेंगे 2000 तो सोचा था वो भी पूरा हो गया, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी, किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में, ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेंगी, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना बाप दादा ने सुनाया ही नहीं, ऐसा भी होना है क्या? इसलिए पहले सुना देते हैं, अलबेले कभी नहीं बनना किसी भी बात में। चार सब्जेक्ट में अलर्ट, अभी भी कुछ हो जाए अलर्ट, उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो, उस समय नहीं देंगे, अभी जमा कर लो जितने चाहिए जैसी चाहिए सबको। खुली छुट्टी है, खुले भंडार है, जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: मनसा से भी आत्माओं को आकर्षित कर आगे बढ़ा सकते, संबंध संपर्क में ला सकते। मनसा की सेवा अभी कम है, लेकिन अभी से शुरू करेंगे तो अंत में कोई रह नहीं जाएगा। कभी भी अगर फुर्सत मिलती हो तो फरिश्ता रूप में जैसे ब्रह्मा बाप ने आप सभी को मनसा सेवा द्वारा आकर्षित किया, घर बैठे हिम्मत दी और चल पड़े, ऐसे आप भी फरिश्ते रूप से मनसा सेवा कर सकते। फरिश्ता बन के ये अनुभव भी बढ़ाते चलो, क्योंकि दुख की लहर जैसे सागर अचानक लहरों में बढ़ता जाता है, तेज लहरें बीच बीच में आ जाती है ना, ऐसे अभी जितना समय बढ़ता जाएगा तो बीच बीच में भी ऐसी लहर दुख की अशांति की बीच बीच में भी बढ़ती रहेगी। कोई कारण ऐसे बनेंगे जो दुख की लहर पड़ेंगे, इसलिए औरों को तैयार करो वाचा के लिए, लेकिन फाउंडेशन पक्का हो, अपना प्रभाव डालने वाले नहीं हो, रियल ज्ञान का प्रभाव डालने। कभी कभी कभी ब्राह्मण बच्चे भी अपना प्रभाव डालने लगते, बाप के तरफ कोई भी सेवा में बाप के तरफ आकर्षित करो, पर्सनल नहीं। अगर पर्सनल अपने पर प्रभावित करते तो उसका पुण्य नहीं बनता। अच्छा,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Get it?

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: कुमान बनाना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा सदा टीचर्स को इसी नजर से देखते हैं कि हर टीचर के फीचर्स में बाप दादा के फीचर्स दिखाई दे, फेस में जैसे बाप के लिए कहती है ब्रह्मा बाप का सदा यही स्लोगन रहा, जो कर्म मैं करूंगा वो सब करेंगे। ऐसे हर एक टीचर का यही स्लोगन सर्टिफिकेट बाप दादा तो देखते रहते हैं। क्या बकरी, ये तो बकरी हुई पहले ही है, बकरी हुए को क्या बकरी, प्रेम में बकरी हुए है ना, तब तो टीचर बनी है। श्रेष्ठ नजर से देखते। अच्छा अच्छा, बहुत आई है टीचर्स में, फॉरेन की टीचर्स भी है, उठी है। अच्छा, मेहनत, हिम्मत और मेहनत में मुबारक।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कुछ भी सेवा करो, चाहे जिज्ञासु कोर्स वाले आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं स्वयं से सब

0: kerjaan Tokia. Program pikiran ikut ayahku ini. Students ni beri koi ajarni. Apne tu kia na. Apke hisab kitab me jamao. Aur unon ko bhi sandesh mil gaya to time sabhi ko aana hi hai isliye karte jao kharcha bahut hua usko nahi socho स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ घबराओ नहीं पता नहीं क्या हुआ कई बच्चे ऐसे होते कहते हैं मेरा योग ठीक नहीं था तभी ये हुआ किसे योग था और कोई है क्या जिसे योग है और सदा रहेगा बाकी कोई सीजन का फल है कोई हर समय का फल है तो अगर कोई आया नहीं सीजन का फल सीजन आएंगे दिल शिकस्त नहीं हो योग श्रीमत को तो मानना है श्रीमत परमान कार्य किया इसीलिए श्रीमत को मानना ये भी एक सफलता है पढ़ते जाओ करते जाओ और ही पश्चाताप करके आपके पाँव पर पड़ी जब आपने कहा हमने नहीं माना यही आप दिव्या बनेंगे आपके पांव पर पड़ेंगे तभी तो भक्ति में भी पांव पड़ेंगे तो वो टाइम भी आना है जो सब आपके पांव पड़ेंगे कि आपने कितना अच्छा हमारा कल्याण किया
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो शांति की धुन रहे जीवन में सदा

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बच्चे सोचते बहुत है, क्या होगा, ये होगा वो होगा, ये होगा वा नहीं होगा, ये होगा, इस सोच में ज्यादा रहते, ये तो नहीं होगा, कभी सोचते होगा, कभी सोचते नहीं होगा, ये होगा होगा कब गीत गाते रहते, लेकिन
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो संबंध है, परिवार में हुआ नहीं हुआ क्या बात है, बीच से तो है। विश्व का राज करना है ना, और राज में उस संबंध में आना ही होगा, इसलिए संबंध संपर्क में नहीं मिलती, अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। रीत आकार समान संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए, और दुआओं की अनुभूति क्या होगी, अनुभवी तो होना। सेवा से दुआएं मिलती है तो स्वयं भी हल्का रहेगा, और जिसके संपर्क में आए संबंध में आओ जैसी कहावत है, ज्यादा मीठे पास चीटियां बहुत आती, तो इतना इसी भी नहीं, लेकिन डबल

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

sabio.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: पहले सोच रहे थे 99 में क्या होगा, हुआ कुछ हुआ, फरवरी तो आ गई, अगर होगा भी तो आपको क्या, आपको नुकसान है भैया, क्या होगा उसका भैया होता है, अच्छा ही होगा आपके लिए, अच्छा होगा दुनिया के लिए, कुछ भी हो जाए बैठ के देखते हो तो ये भी

un hogar. Tu esiste, ti vale co. E fecca. Oggi mi acciste ti. Arc carbarchiste di me. Cotmi carbar me age. Alcel me age. इसीलिए देना न भी हो या तो सारो आपको क्या होने तो खेल बस इसे देखो घबराता नहीं हाय ये क्या हो गया संकल्प में भी नहीं है सब पूछते हैं नानवे में क्या होगा कुछ होगा नहीं होगा बाप दादा कहते हैं आप लोगों ने प्रकृति को सेवा दी है खूब सफाई करो लंबा लंबा झाड़ू दिया है उसको सवा करो तो घबराते क्यों आपके ऑर्डर से वो सफाई करेंगे तो आप क्यों हलचल में आते हो आपने ही तो ऑर्डर दिया है चल अडोल बन मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए अचल अडोल स्थित हो जाओ प्रकृति का खेल देखते चलो घबराना नहीं आप अलौकिक हो साधारण नहीं हो साधारण लोग हलचल में आएंगे घबराएंगे अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे लाइट हाउस लाइट फैलाएंगे इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा साखी बनो
usar. Chai. Patra. Telefon. Va. Apke. TP. Va jo bhi sadhan nikle hai. Va nahi bhi. Punch it.

0: Kiefern con ébano, Salz gesadan, Kabibi, Hote webi, Shoes nahi kar sakenge.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आगे के लिए अब दीवार पुरशारत कर, आगे से भी आगे जाने का दृढ़ संकल्प करो। सफलता की चाबी तो बाप दादा जो भी आज बचे आए हैं वो लोगों विशेष दृढ़ता की चाबी की। So

0: बनाती।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: साधन नहीं है और काम को तो वैराग्य है, तो कौन मानेगा? साधन हो और पहले साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर? साधना छिप गई है और साधन प्रत्यक्ष हो गए। अच्छा है साधन यूज करो, बड़े दिल से करो, क्योंकि साधन आपके लिए ही है, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। बैलेंस पूरा होना चाहिए। जैसे दुनिया वालों को कहते हो कि कमल पुष्प समान बनो, तो साधन होते कमल पुष्प समान। साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपका कर्म का योग का फल है। लेकिन वृद्धि की बात ऐसे तो नहीं कि साधन की प्रवृत्ति में साधनों के वश फस्त नहीं जाते। कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे, शूस करते हुए उनकी प्रभाव में नहीं है। त्यारे साधन बेहद की वैराग्य वृत्ति को मर्ज नहीं करे। अभी आवश्यकता है विश्व में अति में जा रही है, तो अभी सच्ची वैराग्य वृत्ति चाहिए और वो वायुमंडल बनाने वाले आप पहले स्वयं में फिर विश्व।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी तरफ रहना नहीं चाहिए, संदेश देना चाहिए और फॉरेन की सेवा ऐसे ही भारत में भी, विदेश में भी कोई भी, चाहे शाखाएं हैं, लेकिन संदेश जरूर पहुंचना चाहिए। क्यों सुनने की इच्छा बढ़ रही, अभी देखो निमंत्रण देते हैं तो आपका हाल तो बढ़ जाता है, लेकिन और भी सेवा फैलाओ, चांस भी मिल रही है। तो विदेश वालों को सेवा का उमंग उत्साह है, ये दिन Yeah.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Let's go.

सदा करते चलो। इतने अटेंशन से अलबेले रूप से चेकिंग नहीं, बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं हुई, ये चेकिंग तो हुई, लेकिन स्मृति स्मृति।

Beep.

0: Sampan bane. Saman bane.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अच्छा सुनो, पापा और बच्चों की बातें क्या होती है? बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। बाप कहते हैं, रोब क्यों किया? मैंने नहीं किया, लेकिन क्रोध कराया गया। किया नहीं, कराया गया मुझे। अभी बाप क्या कहे? फिर क्या कहते हैं अगर आप भी होते ना?

0: माफ कर रही है लेकिन आगे नहीं करना। लेकिन जवाब बहुत अच्छे अच्छे देते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप भी

嫁妆烦恼，जवाब की प्रकृति सूर्य की शक्ति सूर्य की किरणें अपना कार्य साता भी है, पानी सुखाता भी, दिन से रात, रात से दिन, करके दिखाता फैला सकते हैं।

Ashanti'si. Ne hiç rastlattı. Yani Suriye'ye.

se apa? Apa Master Kian Sudir? Pocotwalang.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्स बनाए अच्छे। बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन अब समय पर मान कोर्स के बजाय फोर्स का कोर्स करो। ऐसा फोर्स का कोर्स कराओ जो वो आत्माएं बाप के सिर्फ सनेही सहयोगी नहीं बने, लेकिन हर श्रीमत को पालन करने वाली फोर्स, सर्व फोर्स पढ़ने वाली आत्मा बने, समीप का रतन बने। ये हो सकता है अभी फोर्स का कोर्स कर।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: देखो बाप की शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप है क्या? सबसे हीरे तुल्य जयंती किसकी है? बिंदू की। बिंदी की तो बिंदी की कितनी महिमा है? इसीलिए बाप दादा सदा कहती है कि तीन बिंदु silly।

0: चबाते हो तो इस सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आए हो। ये सृष्टि मंच ड्रामा है, तो ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गया, उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है, बिंदु। इसलिए तीन बिंदु सदा याद रखो। सारी कमाल सबसे ज्यादा महत्व किसका है? पैसा। पैसे का महत्व है ना, माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। उसमें भी देखो, अगर एक के आगे एक बन जाएगा ना, अच्छा दूसरी बिंदी लगाओ 100 हो जाएगा, तीसरी लगाओ तो बिंदी की कमाल है ना। पैसे में भी बिंदी की कमाल है। और श्रेष्ठ आत्मा बनने में समस्या आती है, बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बिंदु लगाना। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा होता है देखो, लिखो क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है। और
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अगर कोई व्यर्थ वा विकारी सोपन लगाओ का सोपन सजा

0: सात सोचा अकेले नहीं, अकेले सोते हो ना तभी सो बनाते। अगर बाप के साथ सो तो कभी ऐसे स्वप्न भी नहीं आ सकते,
1: yeah।

0: Astu tema to. Ono ku time kapatane. Fera abrat vele.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने देखा है कई बच्चे माया को दूर से

結構

Lord Jack.

Jake.

ऐसे समय के

0: आवश्यक।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप सदा बच्चों को कहती है, कभी भी अकेले नहीं बनना, सदा साथ सदा सा

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज चलाना है या मारा हुआ है, ठीक है, चलाने की शक्ति है शक्ति, उस दृढ़ संकल्प को रोज चेक करो, किस कारण से फिर दृढ़ता में कमजोरी आई, और उस सरकमटेंस के ऊपर मास्टर सर्वशक्तिमान के सीट पर बैठ के उस संकल्प

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कैसा भी कोई हो, लास्ट हो उसके प्रति भी सदा उसको आगे बढ़ाने के लिए एक तो को स्वमान के दृष्टि से देखो। हर एक का स्वमान है, लास्ट नंबर का भी स्वमान है। कोटो में कोई तो है, प्रेसिडेंट से तो अच्छा है, पहचाना तो है। मेरा पापा तो कहते हैं, और सम्मान में रहो और सम्मान दो। एकता लास्ट नंबर पे एक बाबा का बच्चा है। बाबा को सामने लाओ, उसके गलती को सामने नहीं लाओ। परिवार का है, उसमें उमंग लाओ, उत्साह लाओ। चलो गलतियां भी करते हैं, बाप दादा को मालूम है क्या क्या गलतियां करते हैं, वो छिपती नहीं है। लेकिन हर एक अपने आप से पूछे, मैं ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बना क्यों? लक्ष्य क्या? जो लक्ष्य रख गया है, सिर्फ अपने को बचाने का नहीं, दाल रोटी संगठन अच्छा ब्राह्मण जीवन किटराग से सेफ हो गए, इस लक्ष्य से नहीं है। लक्ष्य बहुत अच्छा लिया है, लेकिन अभी कहाँ लक्ष्य और लक्षण में अंतर आ गया। बाप दादा को सब पता है, सिर्फ नाम नहीं लेते। कभी वो भी समय आएगा, जो करता है बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी संग दोष में बहुत है, दिल भी खाती है, करना नहीं चाहिए। लेकिन संग का रंग, बाप के संग का रंग कम लगा है, इसलिए वो रंग लग जाता। बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को प्यार देख कर कहते हैं कि अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ। संग दोष में नहीं आओ। आज होली है ना, तो जो संग दोष में आ जाते हैं, टेम्पटेशन है, संग दोष में नहीं आओ। पड़ता है कि कहता है बाबा, कहता है मेरा बाबा और करता क्या, इसलिए आज होली का दिन है, ऐसी ऐसी बातें समझदार बन के चला दो। फिर भी टॉयलेट के बोर्ड से आगे बदल जाओ, बाप दादा मदद करेगा, लेकिन सच्ची दिल को साफ दिल मुराद हासिल करके देखो, दिल से सच्ची दिल और मुराद हासिल नहीं हो नहीं सकता। होली में रंग लगा दिए ना, उल्टा सुल्टा भी लगा देते, तो आज होली मनाओ उल्टे रंग को, बाप के रंग में रंग। अच्छा, आज होली है ना, तो बाप दादा ने भी कह दिया तरस पड़ता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yes.

सैंपल निकलने भी बाप दादा को खुशी है कि समय से पहले तो आ गए।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार अत्याचार की अखनों की, दूसरी तरफ आप बच्चों का पावरफुल योग अर्थात लगन अग्नि ज्वाला रूप में आवश्यक इस भ्रष्टाचार

एक तरफ अगन अगन को समाप्त करेगी और दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की शीतल भी करेंगे, भेद के फैरा

शास्त्रधारी।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे का नहीं देखता, दूसरे को ये बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना, ये आंखें बंद कर नहीं सकते ना, लेकिन मन की आंख दूसरा करता है या तीसरा करता है, बाप इतना भी फोर्स देके कहते हैं, अगर कोई ऐसी कमजोरी करे तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना। हंसी की बात सुनाए, बाप दादा ने आज थोड़ा सबक सुना रही है, बुरा तो नहीं लगता है, बुरा लगता है नहीं। अच्छा तो एक और भी स्पष्ट बात सुनाते हैं, बाप दादा ने देखा है कि मैं चार्टर्ड थी,

0: सदा नहीं, कभी कभी महारथियों के विशेषता को कम देखते और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते और फॉलो करती है, वर्णन भी करती है एक दो से क्या है, सबको देख ली है, महारथी भी करती है, हम तो है ही पीछे। अभी महारथी जब बदलेंगे ना, हम बदल जाएंगे, लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों की बहुत काल का पुरुषार्थ उनको एडिशन मार्स दिला के भी पास विद ऑनर कर लेती है। आप इसी इंतजार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे तो धोखा खा लेंगे, इसलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ। समझा? ये भी बाप दादा बहुत सुनते हैं, देख लिया देख लिया। हमारी भी तो आंखें है ना, हमारे भी तो कान है ना, हम भी बहुत सुनते हैं, लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना, रीस करो अच्छाई की, बुराई की रीस नहीं करो, धोखा खा लेंगे, आपको तरस पड़ता है, क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय है, अटूट अचल है, उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती है। इसलिए कभी भी मन की आंख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो, मन को सुनने के बजाय
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी क्या याद रखा, कौन सी बात को अंडरलाइन किया, बेहद का फेरा, आत्मा को इच्छाओं से बचाओ, सभी पाप के साथ ऊंचे से ऊंचे परम धाम में बैठ, पाप के साथ ये सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ, फैला सकते है ना, तो बस अभी परम धाम में पाप के साथ बैठ जाओ, वहां से का वायुमंडल

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्तर वर्ष तो बाप दादा ने भी अल्लापेलेपन और आलस और बहानेबाजी खेल देख लिया। चलो 70 नहीं तो 50, 40, 30, 20 लेकिन इतना समय तो ये 3 खेल खूब देख के बचोगे। कौन सी नींद में घड़ी घड़ी सो जाती।

तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये कोई नई बात तो रही है, ये होता ही है, ये क्या है, अलबेलापन नहीं है, ये भी तो करता है। मेजॉरिटी क्रोध से बचने के लिए ये किया, तब हुआ, मैंने किया, रंग वो नहीं कहेंगे, ये किया ना, ये हुआ ना, इसलिए हुआ। दूसरे पर दोष रखना बहुत सहज, ये ना करे तो नहीं होगा। और बाप ने कहा वो नहीं होगा, वो करे तो होगा। बाप की श्रीमत पर क्या क्रोध को नहीं खत्म कर सकते। आजकल क्रोध का बच्चा रोप रोप भी भिन्न भिन्न प्रकार के है, तो क्या आज चार का भी व्रत लेंगे जैसे पहले? विशेष दृढ़ संकल्प मेजॉरिटी ने किया, क्या ऐसे ही चार का संकल्प ये बहाना नहीं देना, इसने ये किया तब मेरा हुआ। और बाप जो बार बार याद नहीं, उसने जो किया वो याद आ गया, ये बहानेबाजी हुई ना।

0: जो चार को हल्का कर देते हैं, तो क्या हिम्मत है जो समझते हैं हिम्मत रखेंगे जरूर, ये नहीं पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे के नहीं चाहिए। छोटे बच्चे नहीं हो, 70 वर्ष पूरे हो रहे, वो तो 3-4 मास के बच्चे के करते हैं, तो आपके बाप के साथी हो ना, विश्व कल्याणकारी हो, उसको तो 70 वर्ष पूरे हो रहे, हाथ बाप दादा नहीं उठाते, क्योंकि बाप दादा ने देखा है हाथ उठा के भी कभी कभी अलबेले हो जाते। लेकिन जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, बाहर जैसा पेपर भी आ जाए, लेकिन बाहर को रुई बना देंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प इसीलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि संकल्प में दृढ़ता की कमी हो जाती हो जाएगा, चलता है चलने दो, कौन बना है। और एक तो बहुत अच्छी बात सबको आती है, बाप दादा ने नोट की है बातें, अपने हिम्मत नहीं चलती ना, तो कहते हैं महारथी भी ऐसे ही करते हैं, हमने किया तो क्या हुआ। लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि क्या जिस समय महारथी गलती करता है उस समय महारथी है, तो महारथी का नाम क्यों खराब करते हो, उस समय वो महारथी है ही नहीं, कमजोर करना, ये अपने को धोखा देना। दूसरे को देखना सहज होता है, अपने को देखने में थोड़ी हिम्मत चाहिए। हिसाब लेने आए हैं, लेकिन हिसाब का किताब खत्म कराने की गिफ्ट लेने आए हैं, कमजोरी और बहानेबाजी का हिसाब किताब बहुत बड़ा किताब है, उसको खत्म करना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: साधारण नहीं होता है।

是飞行机，八哥，给他拿八哥。खुशी को जाने ही नहीं देना खुश रहे।

चित्त

0: 加一点，说不够天不地西格尔的一个马纳基西格尔也西格尔你马纳基西格尔的一个爸爸给你
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
2: सत्यम शिवम सुंदरम
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सेवा करो लेकिन सेवा में भी उपराम, बेहद बाप दादा ने देखा है। मेजॉरिटी बच्चों की योग अर्थात याद की सब्जेक्ट में रुचि अटेंशन कम होते हैं, सेवा में ज्यादा है। लेकिन बिना याद के सेवा में ज्यादा है, उसमें हाथ आ जाती है, वो प्रवृत्ति नहीं होती। नाम और मान पोजीशन का मिक्स हो जाता है, बेहद की वृद्धि कम हो जाती। इसलिए बाप दादा चाहते हैं कि कोटों में कोई मेरे बच्चे
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

sucesso.

विशेष अटेंशन रखूं, क्यों?

Listen.

Oh, shit.

मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि।

0: साधन है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Allez.

voll.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Sociales.

Lila.

लक्ष्य रख।

conoscopi. But not.

Happy.

अपने अपने साथियों को सहयोगी बन निर्वाण

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Eat.

name.

कुछ नहीं मांग रही हूँ।

say something.

Is

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी भी समय और संकल्प ना अच्छे में ना बुरे में होते, तो बुरे में नहीं हुआ ये तो बच गए, लेकिन अच्छे में जमा हुआ, समझे? बचाओ समय को, संकल्प को, जितना अभी बचत करेंगे, जमा करेंगे, तो सारा कलंब उसी फरमान राज भी करेंगे और पूज्य भी बनेंगे। लेकिन एक अटेंशन रखना, ये अगर मानो आपका आज का दिन जमा खाता बहुत कम हुआ, तो कम देख करके दिल शिकस्त हो जाएंगे ना। ओके, दिल शिकस्त नहीं होना, और ही समझो के अभी भी हमको चांस है जमा करें, अपने को उमंग उत्साह मिलाओ, अपने आप से रेस करो दूसरे से, अपने आप से रेस करो कि आज अगर 8 घंटे जमा हुए तो कल 10 घंटे दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि अभी फिर भी समय है जमा का, अभी टूलेट का बोल नहीं लगा, फाइनल रिजल्ट का टाइम अभी अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे लौकिक में पेपर की डेट फाइनल हो जाती है ना, तो अच्छे पूछा रहती है क्या करते हैं, दिल शिकस्त होते हैं या शरत में आगे बढ़ते, तो आप भी दिल शिकस्त नहीं बनना, और ही उमंग उत्साह में आकर के दृढ़ संकल्प करना। ऐसा

sí. Ya que Magni Cartier que amco pachao toa pachane valeo pachao pachao que ne vale nahi aap check karo aur check kar क्या करो चेक करके फिर क्या करो चेंज दिल शिकस्त नहीं चेंज जब बाप साथ है तो बाप को यूज करो ना यूज कम करते हो सिर्फ कहते हो बाबा साथ है बाबा साथ यूज करो जब सर्वशक्तिवान साथ है तो सफल

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: भोजपुरी से करने वाले का सदा नहीं होगा, कभी कभी होगा। दिल से करने वाला करना ही है, बनना ही है। सौगात दे दी देनी, ऐसा खुशी खुशी से संकल्प करेंगे तो आप सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे मास्टर सर्वशक्ति सीट पर रहना मास्टर सर्वशक्तिमान के सीट पर सदा सेट रहना। बोलना नहीं, स्वमान है ना ये, स्वमान अपना छोड़ा नहीं जाता है।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

अशुद्ध संकल्प कम चलते, लेकिन व्यर्थ संकल्प आते जाते। तो इस एक जन्म के मूल्य के अनुसार व्यर्थ संकल्प अभी फिनिश होने चाहिए। योग संगम योग के महत्व के हिसाब से एक सेकंड कहीं कीमती

0: करने से अनेक जन्म उनकी प्राप्ति जमा होती है। ऐसे इन दोनों बातों को अटेंशन
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

Listening. Goodbye.

about you.

Rush.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा भी बच्चों को मधुबन में देख खुश है। कुछ भी हो वे ना, कोई भी

बच्चों के मन में खुशी

मधुबन

भी बाबा की बातें चलती है तो मधु।

0: qué? ¿O qué?
1: ¿O qué?
0: ¿O qué?
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Yeah. The Pop Tata Bee.

0: μονάδα. Το πάρετ και φυλασάκι κοιμή. Πότ πάτη σωνάτη. Τι οφείτε σιώκο πυρκόλ πατάνε. Κρίσκια ούτε ανωμάνια ούτε. Ramen kya bhagwat kya bhakti kya kuch pata nahi lekin kala pehle ke hone karan sab baatein catch kar lete to catching power समझ जाते क्योंकि एक विशेषता है कि जो सुनते हैं उसका अनुभव करते हैं सिर्फ सुनने पर नहीं चलते चाहे शांति का अनुभव चाहे खुशी का अनुभव चाहे निस्वार्थ प्यार का अनुभव कोई न कोई अनुभव परिवर्तन कर देता एक और विशेषता भी है कभी भी कोई कमजोरी छिपाते नहीं साफ दिल इसलिए मेकअप कर लेते हर साल आते ही है भारत वाले कभी मिस भी कर सकते हैं लेकिन ये नहीं करते आना ही है क्या भी करे रशिया वाले भी देखो पैसा कम है लेकिन आर्थिक रूप बहुत बड़ी तो विदेशों की हिम्मत इसलिए हर एक विदेशी को बाप दादा विशेष याद प्यार और मुबारक तेरे तो डबल विदेशों की कमाल बाप दादा देते रहते हैं और वापस शिवा के
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: संगम युग श्रेष्ठ है वो, ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन ये रहम दिल विश्व कल्याणी बच्चे अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता, उमंग नहीं आता दुख में संसार को सुख में बना दे, ये उमंग नहीं आता दुख देखने जाए थे दूसरों का दुख देख करके भी। आपके भाई है, आपके बहने है, दुख देखना अच्छा लगता है, अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो, सब सेवा में लग नहीं लग जाओ, ये प्रोग्राम किया चलो वर्ष पूरा हुआ, अभी मर्सी फॉर बनो, चाहे दृष्टि से चाहे अनुभूति से चाहे आत्मक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो, छियासठ वर्ष समाप्त हो चुके हैं, कम नहीं है 66 वर्ष, ब्रह्मा बाप को अव्यक्त होते भी 33 वर्ष हो गए, ब्रह्मा बाप कब कहते भी है, कब बच्चे आएंगे दरवाजा खोलने के लिए, दरवाजा साथ में खोलेंगे या पीछे पीछे आएंगे, इंतजार कर रहा तो सेवा में एडिशन करो, इससे बाप दादा गारंटी दे रही है कि थोड़े समय में अगर इस विधि से सेवा की तो आपके पास क्वालिटी की वर्षा हो जाएगी, बारिश क्वालिटी की बारिश पड़ेगी, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, कहना ही नहीं पड़ेगा अभी ये कार्य होना है इसमें सहयोगी बनो, नहीं सहयोगी स्वयं ऑफर करने वाले होंगे, लेकिन साधारण समझा क्या करना है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बाप दादा ने जमा का खाता देखा, इसलिए आज विशेष अटेंशन दिला रही है। समय की समापति अचानक होनी है, ये नहीं सोचो मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। जो समय का आधार लेता है समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा। उनका टीचर कौन? समय या स्वयं परम आत्मा? परम आत्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनेगा, इसको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? तो ड्रामानुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेंगे, क्योंकि समय टीचर है। समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं करो, वो रचना है। आप मास्टर रचता हो, तो रचना का इंतजार रचना करे न कर। मास्टर रचता समय का इंतजार।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: परसेंटेज योग की

0: 见了。उसमें कमी होने के कारण योग लगाने के समय योग में अच्छी है, लेकिन योगी अर्थात योगी का जीवन में
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपकी कैचिंग पावर, वाइब्रेशन, कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। ये वायरलेस, ये टेलीफोन, जैसे ये साइंस का साधन कार्य करती है, वैसे ये शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसा ही कार्य करेगी। जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा, जैसे ये वायरलेस या टेलीफोन, ये टीपी, ये जो भी साधन है, कितने साधन निकल गए, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर, एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। ये आधार खत्म हो नहीं है, ये सब साधन किस आधार पर है? लाइट, जो भी सुख के साधन है, मेजॉरिटी लाइट के आधार पर। तो क्या आपकी अध्यात्मक लाइट, आत्म लाइट ये कार्य नहीं कर सकती? जो चाहो वाइब्रेशन नजदीक के, दूर के कैच कर सके, अभी क्या है? Baby.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सेंटर तो सब सेव है,
4: सब ठीक है, ब्राह्मण परिवार भी ठीक है।
3: फिर भी बॉम्बे बाप का बाप का परिवार है, लेकिन जो बाप ने कहा फुल स्टॉप और तपस्या, इसको जरूर बनाना। ये तो कुछ भी नहीं है, घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, खिड़की नहीं खोल सकेंगे तो क्या करेंगे?
4: गुलाबा सेंटर में तो बाहर नहीं निकलते हैं अभी, वहाँ हमारी बहनें भी जो है वो बाहर नहीं निकलती।
3: इससे बहुत कुछ होना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज बाप दादा सभी को ये देखना चाहते हैं, अभी अभी देखना चाहते एक सेकंड में स्वराज के सीट पर कंट्रोलिंग पावर, रोलिंग पावर के संस्कार में इमर्ज रूप से सेकंड में बैठ सकते हैं। तो एक सेकंड में दो तीन मिनट के लिए राजद कारी की सीट पर सेट

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
1: बाप दादा कुछ समय से बच्चों को ये बता रहे हैं वर्तमान समय के प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है। और कभी भी हो सकता

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बिजनेस वाले हाथ उठाओ, ये सब बिजनेस है। अच्छा, नीचे करो नीचे। तो बिजनेस वाले क्या सोचते हैं? चांस मिला है, बिजनेस वालों को बाप से भी बिजनेस कराओ। श्रम खुद किया वो तो अच्छा किया, लेकिन औरों को भी से बिजनेस कराओ, क्योंकि आजकल सर्व बिजनेस मैन टेंशन में बहुत है। बिजनेस समय अनुसार

चिंता है क्या होगा तो उन्हों को चिंता से हटाए अपनी आशिक खजाने का मैं तो सुनाऊ जितने भी बिजनेसमैन आए हैं चाहे छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा है लेकिन अपने हम कार्य करने वालों को खुशी का रास्ता बताओ जो भी आप बिजनेसमैन आए हैं उन्हों को चिंता है क्या होगा कैसे होगा है चिंता नहीं है तो हाथ उठाओ अच्छा नहीं है चिंता कल कुछ हो जाए तो चिंता नहीं है बच जाएगा और फिक्र

0: e फिक्रों के निर्णय अच्छाओं का और बच जाए टचिंग होगी। अभी समय अनुसार ये करे या नहीं करे, इसीलिए फिक्र मारना, बिजनेस भी करना और अपनी स्थिति भी करना। सदैव ये याद रखो, बेफिक्र बात जाए, फिक्र की बात भी बदल जाएगी। हिम्मत नहीं हारो, दिल शिकस्त कभी नहीं, हिम्मत से बाप की मदद मिलती रही। बाप मदद के लिए बंधा हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं, हिम्मत ही के मददगार नहीं। आप सोचेंगे बाप की मदद तो मिली नहीं, लेकिन पहले ये सोचो हिम्मत है। हिम्मत बच्चे की मदद बाप की। आधा शब्द नहीं पकड़ो, बाप की मदद तो चाहिए ना, लेकिन हिम्मत रखी, दिल शिकस्त न होकर हिम्मत रखते चलो तो मदद गुप्त मिलती रहेगी। तो बोलो कौन हो, बिजनेसमैन सभी बोलो कौन हो, कौन हो, बेफिक्र बच जाओ। हाँ बोलो, हाँ बेफिक्र बच, ये याद रखना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

some man.

देख रही है।

forte.

Yes, sir.

Bobby. Salva.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: होगा तो हर सेकंड

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय

0: पियोते तो उसका पश्चाताप बहुत लंबा है, लेकिन अभी भी कोई व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म व्यर्थ बोल समत संपर्क व्यर्थ समत संपर्क भी बहुत धोखा देता है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता। कई बच्चे बड़े चतुर है, कहते हैं हम तो संग नहीं करते, लेकिन वो मेरे को नहीं छोड़ते। मैं नहीं करती, वो नहीं छोड़ते, तो क्या किनारा करना नहीं आता? अगर कोई बुरी चीज दे तो आप लेते क्यों? लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? फेंकेगा क्या? इसलिए व्यर्थ संबंध और संपर्क भी अकाउंट खाली कर देता है। बाप दादा को बच्चों के बिना बिना खेल देखा सी भी आती है, रैम भी आता है। और बाप दादा उस समय टच करता है, ये भी अनुभव करती है, नहीं करना चाहिए, हिस्ट्री मत नहीं है, ये बाबा का समान बनना नहीं है, टच भी होता है। लेकिन अलबेलापन सुला देता है। इसलिए आप भी स्वर्ग के प्रति ज्यादा खजाने खर्च नहीं करो, जमा भले करो लेकिन खर्च नहीं करो, सेवा भले करो व्यर्थ खर्च नहीं करो। बहुत जमा करना है ना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: इस समय आप हरि का आत्माओं के प्रति रहम दिल और दातापन कुछ न कुछ देना ही चाहे मनसा सेवा द्वारा दो चाहे शुभ भावना से दो। श्रेष्ठ सकाश देने के वृत्ति से दो चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो चाहे अपने सने संपन्न संबंध संपर्क से तो लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। दाता बनो रहम दिल बन चला रहे भाषा में चिल्ला रही है शांति तो सने दो दिल का प्यार दो सभी पाप के कौन हो राइट हैंड हो ना राइट हैंड्स द्वारा आत्माओं को सुख शांति का अंजलि तो बेचारों को अंजलि भी नहीं देंगे कितने तरफे आप सभी हाथ तक की बातों से ऊंचे हो जाओ संस्कारों में समय नहीं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी होते भी नेचुरल नेचर दही अब मानी की रही, चाहे बच्चों के ऊपर भी जिम्मेवारी है, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे वो जिम्मेवारी क्या लगती है? कोई भी जिम्मेवारी है, मानो सोन की जिम्मेवारी या कोई ऑफिशियल यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी है, लेकिन वो जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा के आगे क्या है?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ये मिलन विचित्र है, सब रिस्पांस में

Marcitore. Foto. Api.

भी बच्चों को।

مخزه هر بچه

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ब्रह्मांड जीवन अर्थात Jeff।

guys in Miami.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: इससे अभी ऐसी अनुभूति शुरू करें।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा व्यर्थ संकल्पों की समापति करने के लिए सभी चारों ओर के बच्चों हिम्मत दे रही है कि अभी से व्यर्थ को समाप्त कर सदा समृद्ध बन समृद्ध बनाओ। सिर्फ संदेश नहीं, समृद्ध बनाओ, समृद्ध बनो, समृद्ध बनाओ। व्यर्थ को समापति दिवस बनाओ। हो सकता है जो समझते हैं कि व्यर्थ संकल्प अपने को भी नुकसान पहुंचाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, चेहरे पर सदा खुश नमा खुश किस्मत का अनुभव कम कराते हैं। इसलिए अब इस समापति का समय समीप लाना है। किसको? आपको ना, जो समझते हैं कि अभी समापति के समय को समीप लाना है, उसके लिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है, करना है नहीं, करना ही है, स्वप्न में भी नहीं है। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं है। ऐसे हिम्मत वाले बच्चे जो अपने को समझते हैं वो हाथ उठाओ। मन का हाथ उठा रहे हो ना, पाए का हाथ तो बहुत ईजी है, लेकिन मन का हाथ उठा रहे हो। जो मन का हाथ उठा रही है वो हाथ उठाओ। मन का हाथ।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अब ये दो बातें दुनिया में प्रसिद्ध होनी चाहिए। एक गीता का भगवान और दूसरा सर्वव्यापी नहीं। ये दो बातें धीरे धीरे प्रसिद्ध हो जाए। जैसे अभी ब्रह्मा कुमारियों के बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। जैसे अभी दुनिया में ये प्रसिद्ध हो गई है कि वास्तव में ब्रह्मा कुमारियां मन की शांति, मन की उलझन मेडिटेशन से दूर कर रही है। ये धीरे धीरे अभी कोई भी मन में अशांति वाला समझता है कि ब्रह्मा कुमारियों के पास इसका साधन अच्छा है। धीरे धीरे प्रसिद्ध होता जा रहा है। ऐसे ये दो बातें अथॉरिटी वालों के पास प्रसिद्ध हो जाए। एक तो अगर सेटिस्फाई हो जाए और ऐसा बेफिक्र होगे कहीं कि ये बात समझने की है, तो धीरे धीरे ये बात फैलती जाए। भाषण तो अभी कहते ही है कि ब्रह्मा कुमारियों का भाषण पॉइंट टू पॉइंट होते हैं। सुनने आते हैं, समझने लगे, लेकिन मुख्य बात अभी इसका आवाज होना चाहिए। ये तो विशेष बातें हैं। इससे ये सिद्ध हो सकते हैं कि इनको ये सिखाने वाला कौन, तो ऐसा पुरुषार्थ करो
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: स्वभाव संस्कारों को सेवा के समय देखो ही नहीं, देखती है ना इसने ये किया, इसने ये कहा, सफलता दूर हो जाती, देखो ही नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ जी, और बहुत अच्छा, ये तो शब्द हर कार्य में यूज करो। स्वभाव वैरायटी है और रहने भी है। स्वभाव को देखा तो सेवा कदम बाबा करा रहा है। बाबा को देखो, बाबा का काम है, इसकी ड्यूटी नहीं है बाबा की। तो बाप में तो स्वभाव नहीं है ना, तो स्वभाव देखने नहीं है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हंसी की ये बात है तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं और बाप दादा देख करके बाप को रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते, कभी कभी मेहनत बहुत करते और कहते क्या है क्या करे। मेरे संस्कार ऐसे, संस्कार के ऊपर ही कह के अपने को हल्का कर देते, लेकिन बाप ने आज देखा कि ये जो कहते हो आप कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका ये संस्कार है? संस्कार क्या है? और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं जिसको आज आप मेरा कहती हो? वो मेरा है या रावण का है, किसका है? तो आज से ये नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं, यह हवा में किचरा आ गया है और किया जाता है ना कभी, तो ये रावण की चीज आपके पास आ गई तो उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा है, है मेरा है, है नहीं है ना? तो अभी कभी नहीं कहना, जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार क्या। बॉडी कॉन्शियस

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Different. ऐसी बात नहीं है, मधुबन निवासी बनना अर्थात अनेक गिफ्ट के अधिकारी बनना हाँ। देखो स्थूल गिफ्ट भी बहुत मिलती है ना मधुबन को,
2: जाएंगे तो बहुत,
1: और कितना स्वमान मिलता है अगर मधुबन वाला कहाँ भी जाता है तो किस नजर से सभी देखते हैं। मधुबन वाला है, मधुबन वाला है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
3: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा, हर बच्चे का रिकॉर्ड रोज देखते अपने दिल

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सिक्किया सिर्फ सिक्किया नहीं तो, अगर सिक्किया देती भी है, देने पड़ते भी है, लेकिन किम्या और सिक्किया, किम्या रूप बन के सिक्किया दो, मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो, आपका मर्सीफुल रूप अवश्य सिक्किया का फल दिखाएंगे। देखो आजकल साइंस वाले भी पहले ऑपरेशन करते हैं, लेकिन पहले क्या करते हैं, पहले सुला देते हैं, पीछे काटते हैं, पहले ही नहीं काटते हैं, टिंचर भी लगाते हैं, पहले फूंक देते हैं, फिर टिंचर लगाते हैं। तो आप भी पहले मर्सीफुल बनो, फिर सिक्किया दो, तो प्रभाव डालेंगे। नहीं तो क्या होता है, आप सिक्किया देने लगते हो, वो पहले ही आपसे ज्यादा सिक्किक है, तो सिक्किक सिक्किक की सिक्किया नहीं मानता। जो पॉइंट आप देंगे, ऐसे नहीं करो ऐसे करो, उसके पास कट करने की 10 पॉइंट्स होंगे। इसलिए किम्या और सिक्किया साथ साथ हो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Skin.

जो भी मीटिंग में आए हो हर एक जिम्मेवार

सुनते रहिए

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Sunday.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं सोचना, ये तो हो नहीं है, पहले से पता है ये होना है। लेकिन बाप समान रिश्ता बनना ही है, समझा? करना है ना, करना है, करना है, कर सकेंगे। एक वर्ष में तैयार हो जाएंगे, क्या आधे वर्ष में तैयार हो जाएंगे। Repeat.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कभी भी आप सभी का चेहरा ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए, टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं लगता, मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना, गंभीर बनना अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीर होती है ना, वो ऐसे होती है जैसे पता नहीं कहाँ गायब है, देख भी रही है लेकिन गायब, बोल भी रही है लेकिन गायब रूप में बोल रही है, तो वो चेहरा अच्छा नहीं, चेहरा सदा मुस्कुराता रहे, सीरियस नहीं चेहरा करना, क्या करे कैसे करे तो सीरियस हो जाते हो, बहुत मेहनत है बहुत काम है सीरियस हो जाते हो, लेकिन जितना बहुत काम उतना ज्यादा है मुस्कुराना, मुस्कुराना आता है ना, आता है, आपके चलचित्र देखो कभी ऐसे सीरियस दिखाते हैं क्या, अगर सीरियस दिखावे ना तो कहते हैं आर्टिस्ट ठीक नहीं है, अगर आप भी सीरियस रहते हो ना तो कहेंगे इसको जीने का आर्ट नहीं आता है, इसलिए क्या करेंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Zimmer.

Chat me sunade.

0: che cercano. Mary, Freddy, Tristy, Gritty, e Superman.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कभी भी किसी से भी बात करो ना, मुस्कुराओ जरूर। आपके मुस्कुराने से उसका आधा दुख तो दूर हो जाएगा। चैरिटी बिगिन से किसी से भी बोलो, साथी से, ब्राह्मण से, चाहे अज्ञानी से, मुस्कुराता चेहरा, रुए गुलाब। सीरियस हो के नहीं बोलो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं।
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जब बाप के बने है तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया? बाबा तने माना, तने जो भी है, कुमारों के पास तो धन ज्यादा होता नहीं, फिर भी जो भी है सब आपका है। ये वादा किया किया है, अच्छा हाथ ला रहे, ठीक पक्का किया है। तन भी मन भी धन भी और संबंध भी सब आपसे, ये भी किया है किया। अच्छा, तो जब तन मन

Yeah,

Mehel, Namira.

0: सब एक शब्द याद करो मैं परमात्म आज्ञाकारी बच्चा बाप की ये आज्ञा है या नहीं है वो सोचो जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वो सदा बाप को सुते याद होता है, सुते प्यारा होता है, सुते ही बाप के समीप होता है। तो चीख करो
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप सभी फलक से कहते हो, अगर कोई आप बच्चों से पूछे

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अवतरण दिवस

awesome.

같이.

0: Attention, Sam. Reckoning.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: प्लान को प्रैक्टिकल लाने में हिम्मत आपकी और मदद बाप की और ब्रह्मांड परिवार सिर्फ निमित्त बनना है बस, और मेहनत नहीं करनी है। मैं
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी समय पर मान सबको बेहद के वैराग वृत्ति में जाना ही होगा। समझती है कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने, जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, ये समय शिक्षक समय को शिक्षक नहीं बनाए। बेहद की वैराग आद से अंत तक रहा, मेरा तन लग रहा है, मैंने तन लगाया बाबा का भंडार है। बोले नाथ का भंडार है, सी मेरा समझ कर पर्सनल अपने मृत एक रुपए की चीज यूज की कि कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी फिल किया कन्याओं माताओं को मेरा पन नहीं सदै बच्चे अन्य बच्चे भी बेहद काव्य राग रहा। सेकंड में उपराम वृत्ति का बेहद की वैराग का सबूत देगा। एक ही लगन सेवा सेवा और सेवा और सभी बातों से उपराम
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: होकर के देखना, हिम्मत नहीं हारना, दिल शिकस्त नहीं होना। सर्वशक्तिवान के बच्चे, दिल शिकस्त नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना, दृढ़ संकल्प करना। सफल
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जैसे आप बाप को याद करने के बिना नहीं रह सकते, वैसे बाप भी बच्चों को याद

बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे बाप को देख रहे हैं। सभी सदा खुश जो कभी कभी खुश रहती है और कोई सदा खुश रहती सदा खुश रहने पर

बच्चों का कभी भी कोई बात हो जाती है तो वो भी भूलता नहीं है, बाप के पास पहुंचता है। ये नाता ही है।

सकते नहीं, क्योंकि बाप और बच्चों का ऐसा

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने देखा है कि एक संस्कार या नेचर को नेचर तोड़े कि अपने अपने है, लेकिन सर्व का सनई और सर्व बातों में सम्मत में सफल मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इसी नेचर अलग पहले नेचर नहीं अलग पहला मन अलग चीज है। इसी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय जैसा व्यक्ति जैसा सर्कमस्टेंस उसको परखते हुए अपने को इसी कर देवे। इसी अर्थात मिलनसार टाइट नेचर बहुत टू मच ऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल रहना अच्छा है लेकिन टू मच नहीं। और समय पर जब समय ऐसा है उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता है तो वो कुरख के बजाय उनकी विशेषता नहीं उस समय लगती अपने को मोल्ड कर सके मिलनसार हो सके छोटा हो बड़ा हो बड़े से बड़ेपन में चल सके छोटे से छोटे पद में चल सके साथियों में साथी बन के चल सके परों से रिगार्ड से चल सके बोल्ड कर सके। इसी शरीर भी इसी रखते है ना तो बोल जाते हैं जहाँ भी बोलने और टाइट होगा तो बोल नहीं सके अल्लाह बेला भी नहीं इसी है तो चाहता इसी हो जाए अलबेला हो जाए नहीं पता देने का ना इसी हो जाओ इसलिए इसी हो गए ऐसे नहीं करना। इसी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सभी दिल से विश्व सेवा प्रेत झंडा लहराने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत बहुत बहुत पदम पदम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कैसा

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: se partite va spar. E che pacheco se parti. Chaye is a tendki. To sabi pache. Is a sabarti de vaspar. अपने में कोई न कोई विशेषता ध्यान में रख और अपने में धारण करे विशेषता दिन में विशेषता धारण करे जो भी अपने में कमी समझते हो उस कमी को आज के दिन समाप्त कर कोई न कोई उमंग उत्साह की धारणा का संकल्प करना सोने के पहले ये संकल्प करके सोना और अमृत वेले उसी को दोहरा कर हमेशा के लिए अटेंशन दे पाप समान बन जाना ही है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जिस भी सेवा स्थान का सेवा का वृद्धि होती है और निर्विघ्न होती है, उसका कारण क्या होता है जानते हैं? कई सेंटर्स में वीआईपी की सेवा बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन स्टूडेंट की पालना कम करते हैं, इसीलिए स्टूडेंट बढ़ते नहीं है। और स्टूडेंट रेगुलर सेवा के उमंग उत्साह में नहीं रहे, क्लास करेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन अपने उमंग उत्साह में नहीं है। तो ये रिजल्ट है पालना की। मुबारक।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Suck.

0: उसमें अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Yeah.

सबसे महा

Yeah.

Santos.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आजकल के हिसाब से दवाइयां खाना ये बड़ी बात नहीं समझो, क्यों कि कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली फ्रूट ये दवाई है। देखो कोई रंग बड़ंग की तो है ना, ये तो एक कलयुग की लास्ट का ये फ्रूट है, तो खा लो प्यार से। दवाई खाना ये बीमारी याद नहीं दिलाती, अगर दवाई को मजबूरी से खाते हो तो मजबूरी की दवाई बीमारी याद दिलाती, और शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति पर रहे है उस स्मृति में कहेंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएंगे, खुशी दिलाएंगे तो बस दो तीन दिन में दवाई से ठीक हो जाए। कभी भी दवाई या आजकल के तो बहुत नए फैशन है, कलयुग में सबसे ज्यादा है इन्वेंशन आजकल दवाइयां या अलग अलग थेरेपी कहते हैं, आज फलानी थेरेपी है आज फलानी, तो ये कलयुग का सीजन का शक्तिशाली फल है, इसलिए घबराओ नहीं। लेकिन दवाई कॉन्शियस बीमारी कॉन्शियस होके नहीं, तनम भी तो देखा और वो तो नहीं है, ये नहीं बात नहीं है, इसीलिए बीमारी से कभी घबराना नहीं। आई उसको फ्रूट तो खिला दो और विदाई।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी का वेस्ट संकल्प, सारे दिन में बीच बीच में चलता है वेस्ट। Shove.